ब्रह्म ज्ञानी के मन विप्रकाश जैसे तारो प्रकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतस महान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही विमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नान जन प्रवाह करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल करीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी कीना, ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की धर समर्थ वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लहता बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के हुए सुफला।

अनुमाने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच दानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अधो उर्ध अर्धंग अघं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अभेदी अनामंग कामंग समस्तो प्राजी समस्तास्तता।

हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता, किलविक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तोजा पहे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बान छत फल पावै सोई, दुख न दिसै व्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जो यह सो रसना पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द भाव निकटना तिन नर के रहै। हो जो याकी एक बार, चौपई को कह चौपई, संबत सत्रह सहस पणिजै, अर्थ सहस पुण तीन कहिजै, भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा, तीर स्तुद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख, तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सवै, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री अस पाण कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे सब तो है बखान्यो। दोहरा